नारायण कुलदेव ताकी एक दिन को अवसर सानो सानो मैं जाने जस्तो चाहिए सान सानो टुकुरो यू तो गोकुल में जन्मे कृष्ण को लीला भन्न मन लगा मैं वहां सब समय मागे तो नहीं भन्न खोज्ते नारायण।

जाना मलाया जाए लाल तोरा मेरा घर ताई कैसा क्यों दुख बढ़दाए ऐसा क्यों मेरा घर ताई कैसा क्यों दुख बढ़दाए ऐसा क्यों दीना दीना जिंदा की सारा खुने वायरस दीना दीना जिंदा की सारा खुने वायरस हरे राम बचो हरे राम मुखले बचो हरे राम आसे घर चुका मुखले बचो हरे राम आसे घर चुका।

सुर हुआ। गंगा माया बुढ़ा सखी का आवाज में सजी को निके मीठो लोकप्रिय श्लोक सुन्न भाई। वहां आज यह धरती में हूं वहां को आवाज हमी संगे वहां को आत्मा को चीर शांति को कामना करो। श्रोता हम प्यारो जन्मभूमि हम प्यारो संस्कृति हम भूगोल यहाँ का कला साहित्य संस्कृति में हम जीवन है। मानस का माटो को अतीत संबंध और नाता नहीं देश सकती है। आपू जन्म को माटो सब प्यारो लो संस्कार संस्कृति सब का प्रिय हो देश को मायालाई नहीं देशभक्ति देश प्रेम व राष्ट्र प्रेम भाई मानस जो समाज में हुर्कन्छ बढ़ बांध तई समाज को संस्कृति उसको हुर्कदे आन्नी मौला संस्कार संस्कृति हुर्का बढ़ाते संरक्षण करते लिया हमारा ज्येष्ठजन संगसंगे गला संगसंगे बोके आए। इसे कला और गला ने भर दोलखा सुनखानो निवासी भगवती शिवाकुटी रहाक बहनी दोलखा मेलू पवटी निवासी लक्ष्मी विमली को आवाज में रहोक यह निके मीठो श्लोक तपाई सामु संप्रेषण करते।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: 165 98510 66 165।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: the
1: extreme energy drink.
2: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखिया प्यासी रे। मन

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम बैंड 7 मेगाहर्ज बाट म बद्री प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्बत 2083 साल श्रावण कृष्ण पक्ष सन 2026 जुलाई 31 तारीख श्रावण 15 गते शुक्रवार द्वितीय तिथि आज खीर खाने दिन आषाढ़ 15 मा दही चिउरा यो श्रावण 15 मा खीर खाने भनेर भनिएको छ। अब स्तुति गरौं। आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पै भरी।

राजा ना उसका इशारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाए नहीं परे का घरे मंडाखुन सवाले दुर्योधन समान कर्णई समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी हो सद्वात कई काम राजा धर्म कुमार कैसरी हो श्री ब्रह्म ज्ञान यानी विदुर कैसरी ज्ञान हो शिशु जन्म मनुन बड़ाले पनि कृति उज्ज्वल सुत सहित।

0: सबको तंत्र र मंत्र जंत्र जति हो मेरे सब हाथ में रोज रोज खुआउनु पर्छ कर्म अनुसार थालमा कतै पातमा
1: धरती भई मार्गमा म हिँड्थे एक दिन हरिद्वारमा एक विधुवा बसेर तिरामा रुन्थिने बिचारी उहाँ सामुमा गएर मैले सोधे भयो के भनी
2: खाऊ भनेर झन्ट नगयो ठुलो लडाई भयो दुबैयुक्त हुँदै शुक्र भित्रमा कोही नदीमा पर्यो कोही ब्राह्मण कोही सर्प परदा युवाले कामके माथि भइकन सरा कहाँ गए खेलिरहेका थिए
1: सीमा घर हो प्रहाल घर हो दालकी छोरी म वर्ष महापति मरि गए मेरो विपद के कहुकी मथि विवाह गरिदिए बुढा कुरुपी कना मेरै वर्ष महा